पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए बस इना पंजा झगड़िया वेच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया वेच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया है। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाव करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तो उन्हां ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तो सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रैन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े पाई के जब संग होती तब हूँ ना प्यारी, कहत कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

तरन लग्या है। गुरु दी महिमा कर रहा है। अपनी सुरत द्वारा सतगुरु दे दर्शन करो।

इस महिमा विच मन बिरते एकाग्र करके सुरत द्वारा सतगुरु दे चरणा ते सिर रख दिता है, चरण फड़ ले और महिमा कर रहे हो।

0: आकाश वालन आकाश वालन
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वा

अंदर बोल दिए, अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, जिमें कह लो खामोश आवाज। वो आवाज जिहड़ी एक कन नहीं सुन दे, जप रहे हो ते एहसास कर रहे हो कि शरीर दे अंदर गूंज हो रही। सूक्ष्म सिमरन सूक्ष्म हो गया, सिमरन हौली हो गया लेकिन अंदरों पावर वध गई, अंदरों पावर वध गई, अंदरों गूंज प्रतीत करो।

बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गई, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गए, जड़ हो गई जीभ, हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीभ नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जेड़ियां बाहर नहीं दिसती, अंदर उन्हां नाड़ां विच

जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास, अंदर प्यास।

सिंह महाराज साडा रोम रोम जिन्हां दा देनिया नहीं दे सकदा भोलियां नूं राह पाया।

0: खालसा जी आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला का दूरी को गाहक आयो लाद्यों का बिरख जिबा आयो लाभ लपन के ताई आयो लाभ लपन के ताई मोहन ठगावी क्यों पुज पहा मोहन ठगावी

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू बद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरि सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया,

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारां बरछियां विच्चों मौत दे चंगियारे निकले। लोथां नूं लिताड़ दे सिंघां दे घोड़े अगे वधण लगे। मनुखी सिर मतीरियां वांग पैरां विच रुलण लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नूं इउं टकरे।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आ

भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है, टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है।

परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तीरा तुफंगा नु भी पीर गया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैती भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तलवार है, के तू ही तीर है, तू ही बरछी है, तू ही तबर है, तू ही तलवार।

प्यार करने वाले अपने हथियार लेके अपने शस्त्र लेके आनंदपुर साहब नू चल पे। माझे ते मालवे

छल फरेब ना करो, एक परमेश्वर की आराधना करो, तो फिर देखो तुहाडी किस तरह जीत होवेगी। ते कहंदे ने एहो ही उपदेश।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागन सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़ियां किड़ियां चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

खुनक नाम खुदाया। बाहर की अगन जाओ बुझे जल सरता कै, नाव में जो आग लगे कैसे कै बुझाई। बाहर की अगन जो बुझे जल सरता कै, नाव में जो आग लगे कैसे कै बुझाई। बाहर से पाग ओट लीजिए कोट गाड़ी, बाहर से भाग ओट लीजिए कोट गाड़,